0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम के तो नहीं जा रहा, वैसे तो ये थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
1: हेंगे।
2: हाँ,
1: अच्छा अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से। अरे,
1: तुम्हें साथियों से शिकायत
2: है? हाँ, क्योंकि फोन नहीं करत हेंगे।
1: अरे तो घबरावी वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भावुक हो जाऊ दई, वो तुम्हें जहाँ लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथी इनके फोन आ जावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसो नहीं होते ही। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आद तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना था ते, लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते, सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को, सो उकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उकी संख्या बिलात बढ़ गई।
2: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हैंगे, कैसे सोशल मीडिया को भी जमाना है गो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है गो और आप जो

0: आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने कार्य श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुनाते हैं और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
1: बिल्कुल। अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना भी दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे। तो
0: अच्छा
1: काहे के दिन के काहे नेटवर्क एक तो बिजी जाऊ दई और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर नेक कम आऊ दई है। सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगाऊ थेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
0: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जा कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत कराते आपके रेडियो साथी मनीष
1: और भैया हमें तो आप चिंता ही हो जो हमारा नाम है वर्षा।
0: और साथी रहो आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
1: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
0: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
1: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाने बैरू भौजी को तो जमानो ही है वो। काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाती है और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैं। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन यही पे बातचीत अपन को करवो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काई खो काऊ खो बतावे, आपको बताने है गो कह कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
0: बिल्कुल सही कही आपने। काहे से हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैंगे दोस्तन से मिलते हैंगे तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैंगे और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दा हैगो या कोई को समझा दा हैगो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जहां लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैं कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तभी अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
1: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डारबे को जमानो है गो। तो ये पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो ठीक है जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहती पार्टी अच्छी मनी सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और
0: हाँ
1: वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे कि जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले ठीक
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात
1: अब
0: है।
1: मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें
0: सही
1: जिसे
0: बात है।
1: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनू उपाय कर रहे हैंगे तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें। हो सका थे को एक नई उम्मीद मिलवे नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इके लाने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना और इसे अपन और जिंदा हैंगे अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो है अपन को शुद्ध
0: सही बात
1: बिल्कुल
0: है
1: एकदम। तो
0: बिल्कुल।
1: यही से कि जो पोस्टें अपन फालतू की कहते ही काम की भी पोस्टें करवे।
0: सही बात है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी कैसे जब हम सभी ने आ रहे थे तो जान जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे
1: हाँ
0: तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे तो उनको खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताते हैंगे कि यदि पन्नी जानवर खा लेते हैंगे तो उनके शरीर को

0: बहुत ज्यादा नुकसान होते गो, और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते गो।
1: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया, तुम पता का होते ही? अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आंतन में चिपक जाऊती
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल।
1: और भी निकरवी को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत हैगी।
0: बिल्कुल सही कही है कि बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है कि, और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैं, वे भी कछु किया वो चाह रही हैं पन्नी को रोक लगावे के लाने, उनने भी बहुत अच्छा प्रयास करो है। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनाते हैं, लेकिन कछु देर बाद सुनाते हैं, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: मनीष भैया, अपन और अन्य अबे दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत खो सुनो है वो। और हमें लगा था कि अब समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लाए चज्जी का भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैं ये।
1: तो चलो अपन सुनाते हैं भैरव भौजी की जरूर नाटक को।
2: ओ कल्लू के पापा हमें लगत लेकर गए। मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जात, भुनसार है जल्दी आ जाओ, भुनसार है जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जात। हाँ सोते जाने के तीनों बैठी रहते ही, अब अन दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी। मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोड़े बना लूं मैं अपने घर में। मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए। ओ कलुगा कितने मारेगा, ऐसे मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे चिज्जी, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और वो कलुगा तो गाओ तो तीरथ।
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी, देखा होती अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या बना लू, मैं तो पूरी जिंदगी
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
2: हाँ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछु नहीं है घर में आज खावे, मैं क्या बना लू मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो आजाद कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे?
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो थको, तू पतो ही है चाय से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी भरा भी जात।
2: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चुमे पर ही रथ होंगी?
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाए हैं सब।
2: अब तुम रंदो, तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लाला जी के संगे।
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी?
2: हो तो जाती, आपका रोज के रोज मेरे बाद ना बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ। तुम
3: बेच भी की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: मैंने पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़े यार बिल्कुल।
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच वे से मिली थी, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक।
2: तुम्हें पैसा खोर हो रही क्या?
4: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो? कल कह रहा था कि मम्मी घुमा रहे, पापा काय मार रहे हो?
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाते ही तो मूड पे चढ़ाए जाए।
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है, काम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के, भज्जा को का घर को कैसे काल चले।
2: तो लाला जो मैं इनसे कह रही थी बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं खाती,

0: घरों में का बना लो रोज की रोज, तुझे मोई पे बारे बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल।
1: देख ले चाहे तो केवल बहानों से जिद लड़वे को
0: लड़ी में बताओ कहू लड़ी आज तो लड़ी हो
1: अभी कैसे चिपटे बता रही देख लेते हैं देख लेते
2: शांत हो जाते हैं काय लगी भज्जा से तनक अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेंटा तो जरूरी आदमी अब
0: आओ सब रे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
1: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो सही तो कह रहा और वो
0: हाँ तो आप सही कह रहे हैं तुम दो जाने जरूर गए होंगे अम्मी को है वो पिछले भी।
2: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है को उसे नहीं मिल रहा जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थक हुआ तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने और तुम तो और उल्टी गाड़ी में सुना लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
0: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ मैं कछु नहीं मैं को नहीं पूछे

0: शांत कहूँ, बे हो जाऊ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
1: हाँ तुम हो सो तुम हमें डांटर लगी होंगे। अब मैं बाजारे जा रही थी। हाँ
0: बाजार जाने?
1: हाँ
0: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल पहुँच गया मम्मी को मार रहा पापा है। मैं तो ऐसी सुनी से दो भगत आओ तो रोटी नहीं खा पाई।
1: काले भी जा रहे थे, मुझे तो सब्जी ले भी जाने लाला जी। चलो मैं तुम्हारी संग।
0: अरे तुम तो राशन ले आने तो घर को, धनु कह रही थी कि वो चून बढ़ा गो तो एक बोरी ले आने, चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
1: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संग नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी तक। ले लो लाला जी तुम ले लो, हम ले तो तेरे सब्जी।
0: हाँ भाजी मैं बगल की वापस हट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक।
2: हाँ मसाले लेने तो तनक
0: वो लेने तो आटो लेने तो
1: ले आओ। हाँ ले आओ और मैं ला लेता हूँ भजे। या सब्जी तो क्यों का भाव दई? अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दो लियो, जा मैं थैला में डाल दू। लियो डाल दो।
0: अरे भजे जल्दी कर बात तनक भाजी, और हमें चेक चेक करने लगे का बेनो टाइम का, जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे? अरे पन्नियां में दे दो, तुमसे कितनी देर कही अपन घर से, हम हमेशा झूले ले आए पन्नियों ने दो जल्दी भौजी और हल्ला करे। ले आओ जल्दी रख दो, ले जो पैसा अपने। चलो भौजी ले ले हमने सब्जी।
1: का कह रहे लाला जी? अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने?
0: अरे लेब गए मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
1: का लेब गए?
0: हाँ लेब गए।
1: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान?
0: अब जो पन्नियों ने रख लो काय में?
1: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियों में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपना जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को, मैंने समझाई थी तुम्हें।
0: अरे भोजी क्या करूँ, ख्याल नहीं रहता का के, तो घर से आते ना वो जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
1: जब लाला जी तुम ही नहीं कर होंगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कर भी वालों नहीं है। बताओ जब तुम ही नहीं कर रहे, अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही, अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। जिस बात में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
0: जाते यानी सांची कह रही तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी रास्ते में, जब भी आओ तो झूला ले गए।
1: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे तो फिर ब्लास्ट टाइम होगा, क्योंकि मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े सो दिमाग के खराब है, वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
0: अब तो भाई जी अब जा बात छोड़ते हैं, लड़गी ना आपते शांत रहिए घर, हल्ला ना करिए।
1: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में,
0: अगली बार से तो झूला ही ले आऊ मैं।
3: मजा ही आ गया राम धई, बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं और एकदम सही बात, बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैं, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
4: सही कही कायसे, उनने हमें बेरू भौजी के जा नाटक में 3 चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है।
3: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
4: महिला नो जासन जरूरी है।
3: हाँ।
4: यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैं।
3: हाँ।
4: या तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग, जब तक वे यहाँ
3: बैठे सुबह उनके हाथ में भी तो जिम बात है ना पैसा टका,
4: तो वो
3: आजकल मनीष भैया आप गलत बात कह रहे हैं, अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब वे आवे जब ही पैसा खाए चुने जब ही हम कछु सामान ले। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
4: सही वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत तो अच्छा माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती है और साथ में आपसी जो बातचीत होतेगी वास है अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम क्या वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अबे भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी, और सब्जी की तो बात छोड़ो वे उनके पास पैसा भी नहीं रहतेंगे, बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहतेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं, तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
3: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सबके लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी?
4: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी,
3: बिल्कुल है।
4: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्होंने
3: हाँ।
4: कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहन कैसे लगा।

0: सकत है अपने घर में। तो वहां में का होते, एक तो बचत होते, बचत कैसी बचत होते, जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैं। तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके, हाट से पौध ले आके, बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दीगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा, और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
1: जा तो आपने ए नई नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती, बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा लाई, धना लगा लाए, और का कहते हैं
0: बटा
1: भटा, हाँ भटा लगा लाए, और मैं वही में एक दो गोभी लगा लो,
0: हाँ
1: ए धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतनो फायदा दे, इतनो फायदा दे, फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजिया,
0: हाँ
1: ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घरे की मिलेगी, वो बिना केमिकल वाली,
0: बिल्कुल सही
1: ताकि
0: कह रहे
1: बाजार में जो मिल रही है केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कत नहीं है कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
0: सही कहा।
1: तो ऐसो अपन को महसूस भी होने लगे है गो। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को, वो भी आप अपना सकत हो।
0: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हती और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि कैसे पॉलीथीन को इस्तेमाल करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है, और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो।
1: तो देखो, जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी, काहे के पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढोर बच्चे जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो भी तो का उसे कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थे कि सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान, सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे के भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी,
0: सही बात है
1: तो एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थे कि में कि जो भी खाबी पीबी को सामान जब अपन बाहर फेंका थेगी, तो एक तो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे, तो खावे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डोर बच्चो रोज आउट है वो, और इतना ही वो खावे के लाने खड़ो होते ही, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो, सो ऊपर आप वो खावे को सामान रख दो, और जी में वो डोर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो, सो बस वो तो पका है, वो तो खावे की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है, सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है वो, जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें, तो पहले अपने जो पुराने लोग हते, जो दादा परदादा या नाना नानी हते, हमेशा जब भी बाजार जाते तो कहते ले आ बेटा वो थैला दीजिए बाजार हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया, अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है, वो तो पन्नी इनमें टांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब करा थेंगे, तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के, अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं को, तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए, और अपन को ई के हिसाब से चलने है, ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले है वो।
0: बिल्कुल सही कही वर्षा, और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी, और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं, कैसे हम हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल से जाबे को, तो उनने का सीखो है गो बे हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
1: साथ ही हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
0: और साथियों आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है गो, तो जरूर शामिल हो हमारे जय कार्यक्रम में, अपने सुझाव जरूर दे होगे, और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं, तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
1: बिल्कुल, तो अब अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: नमस्कार। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: स्वागत है श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप। इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा, प्रतिभा, योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें। अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं, तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है, लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई

0: सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखे, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने। समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए, जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है, और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा बुराई कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है, और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है, तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं, और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट

0: होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 9425147126।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए नमस्कार
0: और चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है। और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर

0: 26 पर। और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है, और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का, सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: दीदी का हमें एक वो सुना दो, एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल, मैं चल जा भी है तुम्हारी नगर जावे, भाई दीवानी है बारी उमर जावे, संध्या सलगम को।
0: संध्या सलगम को है वो? हाँ बिल्कुल, या नहीं नोना, हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है,
1: ठीक है।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है,
1: हाँ।
0: नमस्कार।

0: को बोल रही
1: ओ महादेवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
0: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक पसंद है आपको?
1: हमें तू मसाला तो मजा।
0: अरे वाह क्या बात है, तू
1: पंचांग दे तो रानो। हाँ वही लोग पसंद है हमें।
0: बहुत बढ़िया था।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ई वेरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों, बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार, स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते, फिर आगे कार्यक्रम में। जी, गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर।

मुई कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सकें, अधिक मुनाफा कमा सकें। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरते। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने

शुद्धता का भी ध्यान रखें। डेली के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पे अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जहां अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहर।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मिला री उड़ जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातदिन भैया को जाबे को समय हो गए, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: Unique.
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आपने इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आओ हम आप सब जन को सुनाओ थे श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं राम कुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
2: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचा के देखत ही रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खंडवा के आ

0: दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर्द होनी, मोरी बेला कली। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है। और दोस्तों, ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है ना, घुंघटा में नैन तोई कजरा रे।

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दोई होंठ लाल, रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

सजी मोर मोटर सी करसो लोग सिंगार मनोरंजन ले भोरा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है, इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया रामसुमन अहिरवार जी। सो आओ दोस्तों फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।

0: बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। तो देखो कितना प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: ये देखें

है कि कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितनो प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे की गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में यही बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

घन घोर घटा छाई सावन की तीज आई घन घोर घटा छाई मेघन झरी।

है प्यारी, देखी कुंवर किशोरी, देखी कुंवर किशोरी।

सुन अर्ज रसिक जन की, सुन अर्ज रसिक जन की, करो चरण बंदनी। सुन अर्ज रसिक जन की।

ही हर्ष आ गई जो बगिया

दुनिया सबरी पंख पसारे कनिया सबरी पंख पसारे

ब्रह्मा चढ़ गए चतुरंगी पर रस पे धुल पे उदय चिंदराए। गज मनसुख पर मलखे चढ़ गए सारी लड़का भय सवार सज गए।

हाथी को खोजे लड़े खेत में जाए। जब यह जान लियो करिया ने उदल अब छोड़े गो नाय। सहजा जोगन को ललकारो अब कुछ देर लगाई नहाए। पड़के जादू फिर सहजा ने नरियू उदल पी दियो चलाए। उसके बांध

बिबला पहुंची है हाथी पर पसावत से कही सुनाए फिर समझायो है हाथी को पसावत सुनकान लगाए तूने बांधो मेरे बेटे को तुमको सर

0: दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा।
1: छतरी उड़ गई,
0: उड़ जाने दे।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुंह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। और लो जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया,
2: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी,

0: गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
0: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
0: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा?

0: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: ओह और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां होती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति सुमित और उसकी भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती।
1: अरे वाह बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते है। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए मैं उनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा, काकू, गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
0: बाय। मजा आया ना दोस्तों?

तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी कि गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं। तो

0: सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं? मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक की आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।

आई घर की भुलिया बदल गई, जितना से आई घर की भुलिया बदल गई, लड़का और पिटियन का ऐसी अकल।

लड़के बन गई सरपंच। गुरुआ की गली गली में बरसात ओ कंचन, गुरुआ की गली गली में बरसात ओ कंचन।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बिवारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करत हेंगे। हम तो हेंगे भैया आपके संगे, आपके रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल

0: नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उधर हमें जाने है गो और उधर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि ई कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथा है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला देंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में इतना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर

राजी पदवी पाई गोदी खेलत रहे रघुराई रानी सुअर गले दी बाई कौशल्या की पदवी पाई गोदी खेलत रहे रघुराई तो प्रेम भाव के भूखे भगवन प्रेम भाव के भूखे भगवन वीरन तज पाठन अपनो प्यारो मुंदे लेखन।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं सीढ़ियां चढ़।

0: यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है, और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, कुछ मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं, जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासे हु तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण

0: स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी के अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया। और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तई के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं। देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी नाश्ता।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोकगीत।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने

0: 92.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुना थे कहानी को, ले थे कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 92.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवते राजन के कुमार और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हते राजा के कुमार,
1: एक हते बानिया के।
2: हां जी, दो जने हो गए।
1: हाँ। अच्छी चास है उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काजों के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जावे।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपने घूरो मस्के भी अपने घूरो मस्के।
2: हाँ।
1: अब जब वन में पहुंच गए
2: हाँ।
1: तो जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर कर गए।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले कल बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल है के थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शकत बीरन।
2: अच्छा,
1: हो अब भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हो बस तो बस बीरन ने जो बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कल का भैया कहाँ के जाने छटे कल ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घे गो सो नाव को रख तो गांव भर को
2: के
1: फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सतकरा है फलाने के पक्किया थे
2: जा सही के आपने
1: नाव को सब पतो है।
2: हाँ।
1: नाव हुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए।
2: हाँ।
1: अब राजन के बादशाह के बनने।
2: हाँ।
1: सो बादशाह के बार बने।
2: हाँ।
1: सो बादशाह बोले कर ले काय सुताई का

0: हाँ
1: बोले कल बीरन तो जा रहा ससुराल है,
0: हाँ
1: हमारे हम कैसे चले जावे।
0: हाँ
1: अरे बोले कल राजन के राजा, आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउ की है ही नहीं ना।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: तो बस बोले कल अच्छी
0: हाँ,
1: सब तीन जने हो गए।
0: अच्छा
1: के नाव होगा
0: हाँ
1: बादशाह होगा बीजन हो गए,
0: हाँ,
1: अब तीन जने की दोस्ती हो गई।
0: हाँ,
1: बस अब चलिए ससुराल के जाने।
0: हाँ,
1: तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
0: अच्छा
1: हाँ गली उमे से बटी
0: हाँ,
1: तो उन्हें लगी प्यास।
0: हाँ,
1: तो राजन ने हुक्म ढीलो तो चलो वीरन पिया पानी। तो वीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बानी बीजक बाँचो।
0: अच्छा
1: बीजक बाँचो बामे से उन्हें गलियाँ अलग अलग। वीरन हो बदमाश,
0: हाँ
1: वीरन बदमाश हो।
0: अच्छा
1: तो वीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बाउरी में वो बीजक को भरा दो
0: ले उसका।
1: अगर हमारा अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बातें ले से संग छूट गो इसे के हमारे जो ससारे चलेंगे
0: चलेंगे
1: तीनों ही
0: तीनों ही।
1: हाँ जाको बीजन बदमाशी के रहो।
0: हाँ
1: तो बस अब राजा पानी पी भी गए।
0: हाँ
1: तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बाउरी में है।
0: हाँ
1: सुबह में बीजक में गिराव लगो रहे। तो राजन ने अपने खोबन की उली चुली
0: धुदाओ
1: और फिर उगे बाँचो।
0: हाँ
1: बाँचो बाय सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो।
0: हाँ
1: कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जब वीरन के कुमार को रास्ता गई।
0: हाँ
1: दोनों जने।
0: हाँ
1: तो बोले कल तुम वे वीरन बोले कहिए राजन के राजा।
0: हाँ
1: बोले तू बहुत बदमाश है।
0: हाँ
1: बोले कल पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है।
0: हाँ
1: हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देखते हैं। बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
0: अच्छा
1: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जो बाउरी पे ठहरे क्या जिन किसी को बीत जाए।
0: सही कही।
1: तो बस बेटे तुम भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले और जी सताई रखता नाव। बोले कल जी राजन के संगे चले।
0: सही है।
1: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं।
0: हाँ,
1: कल ठीक है। तो राजन के कुंवर और सताई का कद्दू जने जा रहे वीरन अपनी ससुराल चले गए। अब सब राजन के कुंवर जा रहे सो बन कजली में पहुंचे। तो अब राजन के कुंवर को लगी प्यास।
0: अच्छा
1: बोले कल सताई का बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकले जा रहे इसे पानी को देखो। बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हेंगे। बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है नाग गाके। बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह पे देख के भी लम्बे जैसे ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो भी चढ़ी सो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
0: बिल्कुल।
1: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मरदा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जरूर हो गया। बोले कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल गया। अरे खुली जाए सुबह जन्म दिया पाई खुली से जीत गए कि आना फिर बाहर आराम से नगर चले गए। तो उतरे काकस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
0: अच्छा
1: वो नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये तो ठीक है तुम ले आए। बोले कल बाहर जाके ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो ले आओ ऐसा जल्दी हो थे कौन कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल

0: साहब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है तो उसके साथ हमारे मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो शाम मचे सचो भर लिया है वो हम खुद प्यास में मर जा रहे हैं। अरे बोले बोले बगरा गए तो वो पानी बगरा के वो दूर है तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के वाले वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले के ये राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूर है जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल्ले कहो उनने कही

0: कही के
1: नहीं, राजन ने कही जा,
2: राजन ने कही जा,
1: राजन ने कही जा बात।
0: हाँ
1: तो उन्हें फिर कही उन्हें, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो,
2: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: अक्का बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल देना।
1: सही है
0: अभी से बोल देना बोलो कब का बना रहे वाले
1: बताओ
0: हैं।
1: सही कहे
0: बोले कल नहीं अबे तो हम और बोल देंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ

0: गली बता दो सो काऊ के द्वारे में
1: पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदल शरीर है कैसे, मुंह करने माइक हूँ पीठ करे इनता हूँ कही के। अब जाइए बताया सुनने के बाद माँ से बोले

0: अपने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही। मैं सावन में है किसी गली से पूछ ही ली। गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ सो गांव के लाने तैयार हो गए। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए। बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर खोल के और बाप ने गेल चली जो ने ये हती से जाते भवन द्वार में छोटे लड़का को देखो तो ससुराल सुबह ने द्वार में अड़ी तो उनने अब पहुंची घरे। पहुंची घरे सुबह घरवाओं को बंद अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने कही, ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ,
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाल।
1: अब लुबग्गा आ गए तो
0: लुबग्गा, तो उनने फिर भाभी से कही, अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बने,
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की, तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला।
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कब्बा गेल कुमार बना दी,
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब भोजन नहीं करने, अब भोजन नहीं करने इसके,
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला से अभी नहीं खुलो,
1: हाँ
0: में तो सलाह हो रही, दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवती से उन्हें व्यंजन की भोजन बने, भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन के लाने, तो दोनों जने भोजन को गए, भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो, और वहां से बने ठना ना जवाब ठोको।
1: अच्छा
0: ठोकने ठोकने ना तो भेद कैसे खोले,
1: सही है।

0: ਮਿਲਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਅਬ ਅਭੀ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿ ਜਈ ਹੈ बोली कल सुन ले कल सिप्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तक जा हुए इस पापन को मिलवा जाने हां इसको मिलवा जाने तो बस भैया की सो तक जा हो गए जहां से तरा हूं वो और उन्हें भज्जा घूरो कसो हां सब रात में घूरो कसो सो वो ऊपर को पलेचा वन पीटते ने कस दो
1: अच्छा
0: वो पलेचा पीटते ने के तन दिन तो गई आगे बढ़ गया क्या है जो ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्होंने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे अब हते बेसु निकल के और बस फिर करी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दो बड़ी रे समंडोरा

0: को रिश्तेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटे से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जावे तो बस भी दुखते
1: हैं नहीं गए
0: उनके ते रुक गए जो ने परोस की ने
1: परोस की ने कही जवाब हां
0: तो परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर बढ़ के जाओ
1: हां
0: तो उनने हकी सो जैसे कछु पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: हां फिर कमाई खोर पुटे पाड़ आ ले गए
0: मैं कहूं वही जहां उनकी रानास थी वो फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ

चाहो तो हम भोजन में ले जाए, तो भोजन उनमें से लगा थाली को भी पहुंचे, तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी, तो बिस्किया पे नहीं थी भी, तो वो बजो बिस्किया बजो, तो उनने बिस्किया की आवाज के संतन मूर बोल गई बन के पड़ोसन दो हाथ दे रही संकी बाद।

इसे तुम बोलना नहीं कहीं बारे फिर दो जाके कहो।

नाव से कही कर केवार नहीं खोल दी, केवार नहीं खोल दी। अब जो जो है सुनो, साधु ने साधु ने सुनो दोहा, साधु कह रहा मन से

0: से साधु जग बम घले राजपूत अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो पूछ कब पूछे
1: सही है का हो रहा
0: का हो रहा
1: कते दुनिया भगत जावे विश्वना का जाए
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो हो कि रानी राजा के पास मिल भी गई अब फिर की दो हफ कह रही हूँ

ऐसी सासों का काम की आती, तेरी कूखन बांझई हो जाती। और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती, तो वो रहती ये तो गड़ी गया है ना सुबह पटक थार और भी भाग गया। जब थार पटक के मैं भाग आई सुबह अपने मेरे में अब रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सवेरा हो सोने घोरो मस्को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे। ठीक है सुबह भी रहती है डट गए खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई वो में खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा था खत जे घरे चले गई। बस आओ अब भी रहती सो अब पीना हकावे बारे हकीर तो जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई कि भी भग के छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सताई अब काल खबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस अब कहीं ऐसी और चली होंगी तो शाम हो गई से एक बमूला को पीलो रहे से उठ

बस गए। बस के में अब बोले कल्ले सुनो सुधा का बोले कल्ले का कल्ले ही पापन को है छोड़ जाने ये रुकता है। अब बस सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबाने के के ठीक है सुधा यक्का से कही के सुधा यक्का को ऑर्डर दौड़ा नहीं है के पत्री लगाओ तो सुधा यक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को तीन पात्र कहाँ खुल जाओ बोले कल एक आप को एक हम को एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर दे मार तो रानी की फार के मार फिर दे। अब बस पात्र लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जज्जी सुबह घोड़े की पछाई की ये रहती ये बजट बात बडूर बजी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडूर कि ये भगे हैं तो जब ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले सुबह सुनने थी सुबह घोड़ों भंचाई रात भाई को बड़ा सुबह तनों वो तनी बडूर कहीं दोस्तों ने एक चावा को ठोको घोरी में सुबह दूध पी थी सो उनने कही रानी ने

जनदृष्टि हथफर में बुझा गई हमें, हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अब इस निर्वाणे के चले गए, अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह पीनस को घर वाले और बाने हकाओ हका को रानी को गाड़ी हकाऊ के पीनस को हकाऊ के रानी तो हका जो वैद्य से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में भी जा रही सुवन ने भज्जा घर वाले नाय के टूपी माई की बोलैया टूपी तो बस बेहती जो रानी वो तो मालिन है तो मालिन गोली गोली कर ले गया। कौन कहा की पाप है नारी कहती है तूने, एक उम्र रानी ने वो मालिन को धर तो राजनी बहू में भीतर काट रहे बारह में बीरा दे जाए अपने अभी तो राजा की बेटी तू तो कछु मोरन को कछु टूटो तो यही है तो बस बेहती तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकाए रहे हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन अब उनकी बेटी हती राजन की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जमदीप नाव तो बेटी को सो बिन्न बे फूलन की तुला तो लगती बा सुबह मालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन को ले जाओ। तो राजन ने हती सोची के मालिन तो इतने आऊ तो हम आज बगीचा घूमे आए तो बगीचा घूमन गए भी सोते बाद राजन की लड़की गए गए तो राजन ने सोची कि जितो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो कहो राजा की लड़की तो जैसे तैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंची सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने के माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उन्हें डाली उन्हें लगाई रानी अब बादशाह ने हती सो राजन की पियर नहीं होती बाबे नहीं होता कम कम अबे नहीं होता पियर को सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह सोची अगर हमारे खुलवा लिया बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा

0: सारे समझ रहे हैं। तो वीरन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है, राजन की बात में कोई खरखसा है, सुनना उसे पूछी जावा। बोले क्यों खबास रखता? बोले कले कहिए राजा, कले कारण का है इको? राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे। कले ये रानी को वन में छोड़िया और भग गया। तो उनने हथी से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो पहुंचे। बोले कल्ले चलो बताओ कि कौन छाड़ू छोड़ी। फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जने। नाव नहीं गए वे दो ही गए। सो बोले कल्ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर लेंगे। सो मालन के पास भी पहुंच गए। राजा गिलंद के बाग में उड़ गए पहुंच गए। सो उनने कहते ठीक है राजा सुन तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ आराम से मालिन को साधा। तो मालिन से पूछी सारी बात। तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गए राजा गिलंद की। ठीक है कि अब अरो कमाओ वास्ता तो बदमाश होते ही है। तो कौन जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दे सारे कही। तो मालूम है राजन बोली कल दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश कर दो बगीचा को। तो उनमें छड़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे। बोले कल हौसा जब तो भी ऊँची हती भीलपुल के और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के। बोले उनकी गैल में सलाह हो गई। बोले कल तुमसे बात करे से तुम मूर काटी दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट ले। बोले ठीक है। तो भी गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ये बोले बैठो। अब उन हतो एक बीजक राजा गिलन कि अगर जो बीजक जीनो पहुंच जाए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो बस भी हती तो अब उन्हें हती तो जब सलाह हो गई बस सकाय से काम लगाओ। अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कल नहीं ये राजा गिलंद को बाकट नहीं चल जी और जी मकान भी नहीं चल जी। सुबीर ने कही तो ठीक है जो काम लगो सुबह अपने मजूरी होने की जावे सुबह रानी जो बबीती छाजी तो दातन कर रही थी बीजक लाई थी बीजक वही लोटा के करती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गए बादशाह ने बाँच ली बीजन बाँच ली बादशाह ने बीजन ने बाँच ली। बोले कर ले ठीक है बोले कर ले तुम तसला पटकर पटकर ऊँचे सार पास एक ही पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कछु तुम नुम सानो और हम झंडारा सुबह गए डारा सु आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिला पहुँच गए वही में दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की सो उन्हें हती सो अब जो खिलाड़ी हती सो उन्हें गोई लोटा दाओ गोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा लिया ये तो कोई राजा है सकल क्यों बोलत कैसे है। बोली कल महाराज होते नहीं है मंजूर से जो राजा पड़े। बोली कल पड़े बोले पकड़ लिया बोले कल आ रहा है चलो अब विनय मिल गई थी वो बीजक वो बीजक उन्हें पहुंच रहा तो पूरा कर एक का दो मिल रही दो मिल रही नहीं। तो भी हटे से लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बहुत ही गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले और हमसे करे तो तुम काट ले। तो भी राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगया एक दिन आते बोले मेरे को खिचिया के पहुंचे गए। तो राजा ने कही बोले कल कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, वो लेकर लेके दी थी। तो फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने, उनकी रानी ने दी हती बात से।
1: देखो दोस्तों, या तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है, यानी कि कहानी खो सुनी है, और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय, तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी, फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: अबे सुनो अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन खास भाव के सुन बताओ है। ओ अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रे विवाह दादा?
2: केना के पूर्व पटोक ग्राम केना जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे तरह
2: जी? हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्चे देखे ना तरह।
1: और
2: वर्कर हम का बस किए काम वाम हम कहते नहीं करें।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से कहते विचार जैसे तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे के? तो देखो ना खाना मुड़त एक बार देखो घाम लगत काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिराट हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें नहीं आया तो हम खा रहे हैं।
1: अपने मुड़ी मुड़ा अपने पास बैठ भी आओ
2: आओ बैठ जाओ नहीं आओ थे पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जी बैठे अब बैठे भी है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फ्री कर लगे तेना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था काका?

अपन और सुनत हैं ये गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

ते जो कार्यक्रम सुनो जे काकेर है। ई कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं के हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं। और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आउत हैं ई कार्यक्रम को सुनो जे काकेर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करन चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

जी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं?
1: दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
0: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
1: ठीक है सर, बढ़िया है।
0: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
1: हाँ जी सर।
0: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
1: सर पानी वानी लगा रहे खेत में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
1: ठीक है सर,
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, हुए वाले के पाए, और बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटी राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बताते हैं आप?
1: तो एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा, चलो
1: बोल तो। हाँ, बोल याद नहीं आ रहे।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक उपाय।

कर पे हरियाए, शिव धाम शिखर पे जब आए, लगे खिसकने सर्प करोड़ की

जन्म में क्या होता है। बिखर गया परवार बात जा बनी बनाई में और सच जाने टिपरारे अपनी हवा हवाई में।

सिंधिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छपी।

0: कुंडलखंड नंबर 10 नंबर 4 है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी कुंडली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: मैं सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाऊ से सतीश साहू जी?
0: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
0: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
0: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
0: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
0: नमस्कार।

ahí va de que no zapato.

0: राजन भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कुछ प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा दें।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे चलते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतना ही संपन्न होत है। सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।